महाराज की रचना आप सुन रहे थे डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में। संगीतकार थे टीवी करंदीकर। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है रेखा रायरीकर के स्वर में। रचनाकार है संत एकनाथ महाराज।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आपने सुनी रेखा रायरी करके स्वर में। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में संत कान्हो पत्रा की रचना।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सरोद वादन. आज के कलाकार हैं अनिर्बान बंदोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. तो आइए सुनते हैं राग जौनपुरी में सरोद वादन. कलाकार अनिर्बान बंदोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. Listen to a sarod recital in Rag Jaunpuri. Our artist is Anirban Banerjee. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy. Listen to a sarod recital in the Rag Jaunpuri. Our artist Anirban Banerjee.

0: वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अनिर्वाण बंदोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल। आज ही कलाकार हैं प्रणाली चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार। तो आइए सुनते हैं राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार प्रणाली चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to a Sarod recital in Raag Jaunpuri. Our artist was Anirban Banerjee. Accompanying him on the tabla was Tarun Roy. This is Raagam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a khayal in Raag Gurjari Todi. Our artist is Purnali Chatterjee. Accompanying her on the tabla is Devashish Sarkar and on the harmonium is Jayant Pandey. Listen to a khayal in Raag Gurjari Todi. Our artist, Purnali Chatterjee.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजा काड़े का गायन. प्रस्तुत है राग पुरिया. मध्यलय ख्याल झपताल में निबद्ध है. बोल है अब तारो बिन कौन मोरी राखे लाज. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है श्याम कुंवर मोरे घर आए. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट वोकल रिसाइटल बाय राजा काड़े. ही प्रेजेंट्स राग पुरिया. मध्यलय ख्याल सेट टू झपताल. बोल अब तारो बिन कौन मोरी राखे लाज. द्रुत ख्याल सेट टू तीन ताल. बोल श्याम कुंवर मोरे घर आए.

यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे राजा काळे का गाया राग पुरिया। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर, वॉयलिन पर संगति कर रहे थे कैलाश पात्रा तथा हारमोनियम पर संगति कर रहे थे प्रकाश वगर। अपना गायन जारी रखते हुए राजा काळे अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग छायानट। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है करत जो मोसे नेहा की झूठी बतिया। द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है प्यारी लाडली करत बतिया। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दैट वॉज राग पुरिया बाय राजा काळे। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर, ऑन वॉयलिन बाय कैलाश पात्रा एंड ऑन हार्मोनियम बाय प्रकाश वगर। कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल राजा काळे नाउ प्रेजेंट राग छायानट। विलंबित ख्याल सेट टू एक ताल, बोल करत हो मोसे नेहा की झूठी बतिया। द्रुत ख्याल सेट टू एक ताल, बोल प्यारी लाडली करत बतिया।

ये था राग छायानट। आप सुन रहे थे राजा काळे का शास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे नीलेश जाधव तथा हारमोनियम पर संगति कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग छायानट। You were listening to vocal recital by Raja Kale. He was accompanied on tabla by Nilesh Jadhav and on harmonium by Srinivas Acharya. This was a contribution.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विद हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग भूपेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय अभय रुस्तम सोपोरी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अक्रम खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: ये था दिल्ली का बात,
1: दिल्ली का।
0: अच्छा अब एक टुकड़ा पी अजाड़े का
1: बेहतर है।
0: अभी सुबह से
1: बेहतर है।

0: ये तो था फरखाबादी
1: जी।
0: अब लखनऊ का बाज
1: के वो भी सुनिए, जी हाँ वो भी सुनिए।

0: उस्ताद, अपने घराने और अपने उस्ताद के अलावा आपको किसी और घराने की तबला भी तो पसंद आया होगा, मतलब किसी बुजुर्ग का तबला आपको पसंद आया हो या उनका घराना?
1: घराने तो ये चार ही है, मगर इन बुजुर्गों का मुझे बहुत सब मेरठ में मैंने खान साहब नन्ने खान को सुना, कूड़े वाले थे
0: जी,
1: बड़े मियाँ काले खां के शागिर्द थे, वो उस्ताद थे जलाल के, उनके शागिर्द थे नन्ने खां, बहुत अच्छा बजाते थे और बड़े रौनक थी हाथ में, और हाथ जो जलाल का चलन था वो बजाते थे।
0: अच्छा।
1: और दिल्ली में
0: जी
1: हाँ साहब नत्थु खां, दिल्ली मैंने उनसे अच्छी नहीं सुनी किसी से
0: जी,
1: जैसे वो बजाते थे, और जिन जो अदायगी उनसे होती थी मैंने नहीं सुनी अपनी उम्र में
0: जी। अच्छा, इन बुजुर्ग की खूबियां तो आप ही बता सकेंगे, क्या उनमें बाबत थी, क्या चीज थी?
1: बाबत ये थी उनमें कि जो जहाँ का बोल था
0: जी
1: वो वैसे ही निकालते थे
0: जी,
1: और जो पाव भर का वजन है तो पाव भर करके ले जाते थे, डेढ़ पा या पौन पा करके नहीं ले जाते, तो वो असलियत जो थी वो बात थी उनके हाथ में, ये अच्छी मालूम हुई।
0: उस्ताद ये तो खैर मानी हुई चीज़ है कि पुरानी तालीम तो फिर पुरानी तालीम है ही, असली चीज़ है और बुनियाद उसी चीज़ की है, मगर आपको इतना अच्छा होगा आपने खुद भी तो कोई नई बात पैदा की होगी तबले में, या आपने कोई बंदिश, आपने पुरानी बंदिशों के आधार पर कुछ की होगी, और एक दो मिसाल अगर आप दे सकें तो
1: जरूर ना सुनाऊं।
0: जी हाँ जरूर।
1: अब सुनाइए।

0: क्या कहने उस्ताद, बहुत ही खूबसूरत बंदिश है। एक आध बंदिश अगर और
1: सुना तो। अच्छा जी, सुनो मुंह से सुनाऊं पहले
0: जी।
1: दिन दिन ना ना तिन तिन ना ना दिन ला दिन दिन ना दिन दिन ना ना तिन तिन ना ना दिन ले कर दे दा कर दे कर दे कर ला दिन कर दे कर दा दर कर दे कर दा कर दे कर दा कर दे कर दा दर कर दे कर दा कर दे कर दा दर कर दे कर दा कर दे कर दा दर कर दे कर दा कर दे कर दा कर दे कर दा।

0: हो ना खंजरी हो ना ढोल हो ना कोई चीज गैर ना हो तबले से, वो तबले के बोल
1: जी।
0: और तो वो किनसे मिलेगा
1: जिन्हें
0: बुजुर्गों से सीखा
1: जी हाँ,
0: और वो देख के उनको से सीखे
1: जी हाँ,
0: तो बढ़ने की सूरत है
1: जी हाँ, बिल्कुल आप सही।
0: और करनी
1: करना रियाज करना
0: जी हाँ।
1: बहरहाल साथ क्या अर्ज कहूँ, बहुत खुशी हुई आपसे इस वक्त मुलाकात करके, और आपने बहुत ही फायदे की बातें बताई। और
0: मेहरबानी
2: In the special program of Great Masters of Indian Music, you were listening to an interview with Ahmad Jan Tirakwa. Interviewer was Mujahid Niyazi. This program is a contribution of Central Archives of All India Radio, New Delhi, compiled at Akashavani Bengaluru for Ragam 24/7 Indian Classical Music Channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन. उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे हैं अतुल फड़के. प्रस्तुत है ताल तीन ताल. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर. ही इज अकम्पनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय अतुल फड़के. पंडित राजेंद्र अंतरकर प्रेजेंट्स ताल तीन ताल.

ये था ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल पंचम सवारी। दैट वॉज ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर नाउ प्रेजेंट ताल पंचम सवारी।

ये था ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल द्रुत तीन ताल। दैट वॉज ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल विद ताल द्रुत तीन ताल।

धगत तगड़े धिन ताक धान ताक धिगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धीना गिने ना धीन धिगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धीना गिने धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धीना गिने धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धीना गिने धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धीना गिने धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े धगड़े

ದಿನ ಕಡಿದ

ये था ताल द्रुत तीन ताल। आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे अतुल फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल द्रुत तीन ताल। यू वेर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर। ही वॉज अकंपनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय अतुल फड़के। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद, तदुपरांत जौनपुरी धमार. कलाकार हैं सुमोना गुप्ता. आपके साथ पखवास पर हैं प्रोबाल नाथ और हारमोनियम संगी हैं कमलाखा मुखोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Bhairav Dhrupad followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist is Shumona Gupto. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Probal Nath and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद तदुपरांत जौनपुरी धमार सुन रहे थे। कलाकार थी सुमोना गुप्ता। आपके साथ पखवास पर संगीत है प्रबालनाथ और हारमोनियम संगीत है कमलाखा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिरी पर सितार वादन। कलाकार हैं रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर हैं अभिषेक चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to Bhairav Dhrupad, followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist was Sumona Gupta. Accompanying our artist on the Pakhavaj was Prabal Nath, and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist is Reena Srivastava.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिरी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थी रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अभिषेक चट्टोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist was Reena Srivastava. Accompanying our artist on the tabla was Abhishek Chattopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संतूर वादन. कलाकार है श्री सिद्धनाथ मिश्रा. सबसे पहले आप बजाएंगे राग बसंत मुखारी. विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सनी न्याजी. इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टुडे वी आर प्रेजेंटिंग संतूर रिसाइटल बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा. फर्स्टली He is presenting Raag Basant Mukhari. Both the compositions are set to Teen Taal. Accompanying him on tabla, Sani Niazi.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग बसंत मुखारी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग चारुकेशी। तबले पर संगति दी है सनी नियाजी ने। विलंबित एवं द्रुत दोनों रचनाएं तीन ताल पर निबद्ध है। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग बसंत मुखारी बाई सिद्धनाथ मिश्र। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी एकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला सनी। Both the compositions set to Teen Tal.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे श्री सिद्धनाथ मिश्रा का बजाया संतूर पर राग चारुकेशी। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ यू आर लिसनिंग राग चारुकेशी बाय श्री सिद्धनाथ मिश्रा। अब आपके सामने प्रस्तुत है पंडित राज खुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट पखावज वादन by Pandit Raj Khushiram. He is presenting Mohan Tal and accompanying him on Sarangi, Vinod Kumar Mishra.

चौथ है नव दुर्गा परन, इसमें नौ देवियों के नाम आए हैं और गुरु कृपा से ये स्वनिर्मित है। दुर्गे दुर्ग तिहारणी माता दिधान तान धाता शैल पुत्री जय ब्रह्मचारिणी दर्प दलन त्रयतापहारणी गदिगण धा चंद्र घंटा गणन गणन घन घनात घनन घन कुष्मांडा गदिन धान धान धा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय कान त्रिगृत तक धागृतिक धूमकृत ग्लान त्रिगृतिक तकान काम त्रिगृतिकता त्रिगृतिकता त्रिगृतिकता तकान महागौरी जय सिद्धिदात्री अणिमा धा महिमा धा लघिमा धा त्रिगृत कत ईशत धा वैशत धा प्रकाम्य प्राप्त अंतरमित धा धा धा पुंगी फल तांबूल लवंग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर करधर राज नमत जय नव दुर्गे शंख नाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धाद्रि कर जय बा जय ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः धा धा धा धा धा।

अभी आप सुन रहे थे पंडित राजखुशी राम का बजाया पखावज पर मोहन ताल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। नाउ यू आर लिसनिंग मोहन ताल ऑन पखावज बाई पंडित राजखुशी राम। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी. राग है कोमल ऋषभ आसावरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और विलंबित गत. विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी. द रेंडेशन कमेंस विद द राग कोमल ऋषभ आसावरी.

अब आप सुनेंगे राग रागेश्री। आप प्रस्तुत कर रहे हैं रागेश्री में आलाप और दो गतें, जो क्रमशः तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। नाउ लिसन टू राग रागेश्री बाय पंडित देवव्रत चौधरी।

आप सुन रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित देवव्रत चौधरी से राग भैरवी में एक धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स भैरवी धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित देवव्रत चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 247 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत ब्रो. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Sulochana Braspati. First listen to Rag Shivmat Bhairav. She is accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami Sarangi.

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए राग हिंडोल। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंग पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग शिवमत भैरव बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। She was accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on sarangi. Now listen to Rag Hindol.

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग हिंडोल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग हिंडोल बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. श्रोताओं, भक्ति संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे

0: कुछ भजन और श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं नंदनी भट्टाचार्य, नवनीता बसु, वेशना चंदो, सौरव मायती और नमिता भट्टाचार्य। आज के भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम भजन से करने जा रहे हैं। कलाकार हैं नंदनी भट्टाचार्य। तो ये सुनते हैं नंदनी भट्टाचार्य से ये भजन।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी प्रेजेंट डिवोशनल सॉन्ग्स। वी बिगिन द प्रोग्राम विद मीरा भजन फॉलोड बाय अ कबीर भजन। आवर आर्टिस्ट इज नंदनी भट्टाचार्य। लिसन नाउ टू मीरा एंड कबीर भजन्स। आवर आर्टिस्ट नंदनी भट्टाचार्य।

0: अभी आप नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनवाते हैं एक और भजन। कलाकार हैं नवनीता बासु। तो लीजिए सुनिए नवनीता बासु का गाया ये भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा एंड कबीर भजन्स। आवर आर्टिस्ट वॉज नंदिनी भट्टाचार्य। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Listen now to a Kabir bhajan by our artist, Nabonita Basu.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्यामा संगीत। इस श्यामा संगीत के गायक कलाकार हैं विश्वनाथ चंदो। तो ये सुनते हैं विश्वनाथ चंदो से श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू कबीर भजन्स बाय आवर आर्टिस्ट नोबोनीता बासु। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the program, we now present Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet. Our artist is Bishwanath Chandok.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे विश्वनाथ चंदो। श्यामा संगीत का ये क्रम जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सौरव मायती का गाया हुआ ये श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट विश्वनाथ चंदो। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट सौरव मायती।